आकाशवाणी इम्फाल ग़सी सगोल शेन नुमीद इंगागी तरह तरह नी पानबा सकावत लिशिंग मा जमापन निफु निपाल जुलाई की तांग अनि इंग्लिशिंग अनि कुंतरो हौजी अयुकी पुंग मंगा मखाई ताकिबग लुनेना आकाशवाणी इम्फाल की संगाई चैनल की अहानब थौरम परेंग संदोक पाउजरी संदोकचरीब मेघहर्षा महुम दशमिक मंगादनी अंगनब अयुग सिदा थौरम ताबिरीब ख्वाई पुनमकपु इकोक नोना खुरुमजरी तरम नोकचरी

ताबिदे यैखोम गंगा न सकपा एल इबोमजा न सेरेंबा मणिपुरी मतमी सेमा अदोम न थोरम ताबिदे बासी आकाशवाणी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल देगिनी होजिक लांथोक चेरी नाहरोल की खोंजेल।

आकाशवाणी इम्फाल हजिक सन्दोक्सरी गुड मॉर्निंग मणिपुर ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯒꯨꯗ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯗꯨꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯁꯩ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯏꯁꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔ 9863102016 ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯦꯛꯁ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯋꯥꯆꯦꯞ ꯃꯦꯁꯦꯟꯖꯔꯒꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯈꯣꯏꯗꯥꯕꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯅꯠꯇ꯭ರꯒꯅ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨꯁꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯒ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯒꯦ 9863102016

भारत सरकार की मिनिस्ट्री अफ टेक्सटाइल्स की डेवलपमेंट कमिश्नर फॉर हैंडलूम की सेंथंग मखादा मणिपुर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड सिंधुना हथकरघा मेला स्टेट हैंडलूम एक्सपो लाग्लिब थांगजा जुलाई मरी देगी इम्फाल इसकी नीलकुथित लेबा अरबान हत्त हौरगनी जुलाई तरह तरह फव चथगदब हैंडलूम एक्सपो असिदा पुण्य स्टॉल हुम्फू हांगनी वीवर सिंह आर्टिसन सिंह कोऑपरेटिव सोसाइटी सिंह प्रोड्यूसर कंपनी सिंह सेल्फ हेल्प ग्रुप सिंह जेएलजी सिंह फेडरेशन सिंह कॉर्पोरेशन सिंह अमसुंग एपेक्स सोसाइटी सिंह ना अप्लाई तौबग लोइनना हटकरघ मेला असिद लाक्तुना सरू यानबा मणिपुर हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर एलांगबम जितेन ना खंगलकली

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी इम्फाल हुजे मणिपुरी दमोर वे बपाउ ताबिरसी।
4: आकाशवाणी इम्फाल हुजे फाउ की मरो वे बपाउ दा विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VVG रामजी मुख्यमंत्री जुनाम खेमचान गसे इम्फाल वे जिला की मनुंग सने लेबा सलाम थरोइजम इको टूरिज्म पाकधोक लगनी थरोंगे सरुक अम ओइना जन सम्मेलन चपांगथोकनी नेशनल हाईवे कंट्रा इम्फाल जिले बाम लंबी सिक्योरिटी अकन सेक्शन थरंग लोइनना नोंबदा चंगदब याद्रब पलम जिंग पुब गाड़ी चाम यांखई इम्फाल गिदम गसे जिले बाम थादोख्रे गाड़ी सिंग अदुगी मनुंग दा LPG पुब गाड़ी कंट्रा डीजल 35 पेट्रोल पुब गाड़ी 30 यावरी नुमिन इनि सुब चथरा पकन मापन सुब नेशनल इ गवर्नेंस मिफम गसे जयपुर दा लोइसिन लगनी लोसन भी थरम दा नेशनल इ गवर्नमेंट अवार्ड चोयन थोकनी मना सिंग असे केंद्रम राज्य सरकार ने इ गवर्नेंस मपांगल कंखल हनबगिदम लखोल लब तोंगान तोंगान बा थोरांग सिंबो सखंग दुने पीबनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रंग असे जापान के प्रधानमंत्री सानिया ताकाइसी गा न्यू दिल्ली दो सही ओइबा समित छरो यादन वारि सानगनी। जापान के प्रधानमंत्री ताकाइसी रमिर हमनि के भारत खोंग छतंगना न्यू दिल्ली दो थोंगले खिबनी। समित असे दलेबा अनि के मरता यानवार कयासु सही तोनरब याई। डेंगी लेना थेना बसेम साबग मई लेना केंद्र के हक्सेल मंत्री JP नदाना सभापति ओइदनांगना न्यू दिल्ली दा वांग मथा के मिफम अम पांगथोक्रे। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ना एयर स्टाफ के वाइस चीफ ओइनांगना नि थाबो पुबा होक्रे। ऑपरेशन सिंदूर दा मांग इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के चीफ ओइना थौदांग सुपुखी। झारखंड के सिंहभूम जिला दे मलेरिया ना नाबदगी मिय मे लेखे दबगी दगी राज्य सरकार ना हक्सेल ग मई लेना सेक्शन थ्रांग लखनबा मियाम दा खंगनक्रे। राज्य सरकार ने जिला खुद के डेप्यूटी कमिश्नर दलना आशीषांदोर थीब खुदक लखनबाई फीफा वर्ल्ड कपिंग अयुप मंगा मुखारी सानी मैच USA बोसिनिया एंड हर्जी गोविनाव पाजल अनीसुनो थोख्रे अहिंग नुयाई पुखाई चेपद स्पेन का ऑस्ट्रिया का सानगनी पाउ लोजरे।
3: पुफम असद संदोसरी गेट मथंग मथंग होना

ताबिरे श्रेया घोषाल मदी सोनू निगम अनिपुना सकमिना बैसे मथंग ताबिरसी आशा भोसले मदी मोहम्मद अजीज अनिगे अपुन मुखन जल्दी से

0: Presenting Mahindra's all-electric SUVs, the BE6, XUV9e and XUV9S, with a real-world range of over 500 kilometers, lifetime battery warranty and ultra-fast charging from 20 to 80% in just 20 minutes. So what are you waiting for? Visit Shiv's Auto Imphal for test drive today and bring home your dream car.
1: Hi, Dolly.
2: Hi.
1: Ngai kuriye, nang aduk kena lai do kai sakhi hai do.
2: Ai gi dukan ma hang go do. Et purchase me nam ta hab ke na na hon da ta na gi na la ini.
1: Eh, yam phai ke no tu dia. Kari kari no ban ngi dukan da phangi ka hai sina.
2: Ai gi di variety store ne. Wholesale su, adu retail su dum ya oreda.
1: Oh, adu ore ti ne. All India re do Imphal da kok chalu ya dro nang bo.
2: Oh, adu mi loi na mak ta yohan babu ngam do ri bro du bo.
1: Kari gi ngam bo do no hai. Singkong singya da na ta na. Ahal na ha. Me kum tik na ta na ri ba. Sangai channel hai ba amaga ne bangla channel hai ba amaga ani le re bani ko hujik tia
2: o o mamal di ki a hairak toi jano adu ai di amaga di tali ko
1: is is mamal gi ka su khali ma le
2: khandra di kaino nang bo
1: lupa samri sangma da gi hawra ga ne so is maya mam su le ra mi doli
2: o o adu ai tar ga di khwai di ki phaba option si masina oire ni na di khalle
1: to to to to oi doi de masina khwai di ki phaba
2: umna ma putaram na okchari Akashvani Imphal ki commercial section da lengshin birau adom gi paujel mioi lakha kaya da yohan jage
3: Akashvani Imphal hausek numijung bapung tarani thoi tare manipuri da pau tabirasi
4: Akashvani Imphal आर के गोरानी न पाउ पाजरी आहन बदा मरोइब पाउ मुख्यमंत्री युमनाम खेमचानंगा से इम्फाल वे जिल्ला दा विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीवी जी रामजी हौदोख्रे केन्द्रना आसाम दा हौजों मायुंग नरबे इसिं जाव खुदोंग थेबा सि मपुंगफाना तेंगमांग पिगनि हेन थाजेबा पिख्रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगा से जापान के प्रधानमंत्री सनेता काइसिगे न्यू दिल्ली दवारी सानगदौरी अमसुंग एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फन ऑर्गनाइजेशन सेनबा से लिंग कुनमा कुंतरुक ओना ई पी एफ तमलपा सेनपम की सेंदो चाद निपान दशमिक अनीमरे लौथोख्रे मुख्यमंत्री युमनाम खेमचानंग से इम्फाल वे जिला विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीवी जी रामजी हौदोख्रे जिला सलाम थरोजम इको टूरीजम पाक्त पांथुप थरम की सरुक मोइना राज्य थाकी जन सम्मेलन मुख्यमंत्री सरुक यागनी राज्य रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज विभाग ने सिन्ब थरम आर्ट एंड कल्चर मंत्री खुराइजम लोकेन एम एल ए सिंह डॉक्टर सापम रंजन सिंह कराम श्याम मकोक्थों ऑफिसल सरुक याखी अगर तुंग मुख्यमंत्री ना लंफेलपा लेब सी एस आई आर नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बायो फर्टिलाइजर पुथोनब बायो रिएक्टर यूनिट संगागनी थरम बायो फर्टिलाइजर पुथोनब की मांग सही तौनगनी इम्फाल वेस्ट जिला की एस पी ना एम पी एस ऑफिसर अहम इंस्पेक्टर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जिला पर्सनल क्या कांपुफी थोम के नमदिल लोद अखनब मौ तौनब थम्रे जिला एस पी की चेरोल मफम अखनब ड्यूटी की दमक थम्ली फोर्स इम्फाल वेस्ट कमांडो की टीम अनी आर ए एफ की कंपनी सी आर पी एफ की प्लेटून अनी यावरी एस पी इम्फाल वेस्ट इंचार्ज होगनी नेशनल हाई कंट्रा तरह इम्फाल जिला लंबी सिक्योरिटी गासल लोनना नौम तंगाई फेद चौंक पोलम पुब गाड़ी चाम यांख इम्फाल तम तौरक्रे अखोई जीवाम पाउमी गाथे बेसोजी पुलिस की पाउ पलना इम्फाल तम थोब गाड़ी एल पी जी पुब गाड़ी कुंथ्रा पेट्रोल पुब गाड़ी तराम डीजल पुब तरामापन आलू पुब गाड़ी निपान हिदा लांथक पुब गाड़ी अहम ट्रांसपोर्ट गाड़ी कुन सिमेंट पुब गाड़ी तरामाथोय ऑनलाइन की पोचे पुब गाड़ी मंगा अतय अत पोल पुब गाड़ी यावरी हौजे जीवाम तेंगर पुब गाड़ी तरातुक एल पी जी तराम अत गाड़ी पंदुना लेहौरी केंद्र ने असम हो मायब इसिंग इचा खुदोंथिब मपुंफान तेंवांग पिगने हन थाजब पिख्रे केंद्र की लौ सिंगों रूरल डेवलपमेंट मंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्र की पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री किरेन रिजिजू ने इसिंग इचा सोलब असम की धेमाजी जिला चतुर येंसिनख्रे धेमाजी जिला युम लेना इसिंग थुमजिनख्रे मई की पुनसी मांगख्रे मई निपान हो खरी Jila ashta isa oshna lambi thong yum singam di lophong kya amangata thohan kre. Mantri na hai aw mathaki mantri singati mamasu asama masung Arunachal Pradesh isa ono maram oida amangata tholi badugi akupa report bikalana pham singashida thagani hai na chupong dokhi. Kendriya Mantri Shivraj Singh Chauhan amasung kre rijijuna Arunachal Pradesh ke mukhyamantri Pema Khandu ga punangarang ising isawna cholebar raijya adu phamsing nongthak tak yengsin ki makhoina raijya asigi is siang jila gi pasigar amasung lower subansiri desu isaw gi phibam yengsin ki Arunachal Pradesh nong leptana chubedegi Assam da Brahmaputra turel gi imai wang khalak pedegi Kaziranga National Park authority na isaw gi sem sari pasing hena kan khat han kre han boina park asida artificial intelligence technology sejene duna isaw gi phibam yengsin lagani Isauk thropo de thengna na ba forest camp sing da he sing sem saduna thamle lamla ki sa sing chathok chasin tok buda asu engam thon dana ba national highway chatre ka tara manga su mikup na hom sing na kup na yeng silli gari sing kan thon dana ba cctv camera sing thamle tabi riba pawasi Akash Bani Imphal dagini Pradhan Mantri Narendra Modi Nangasi Japan Pradhan Mantri Sanae Takai Siga New Delhi Da Sahi Ki Oiba Summit Asar Uyaduna Wari Sana Gadauri Summit Ashida Laibak Ani Ki Marakta Yana Warol Kayasu Sahi Taunara Bayai Japan Pradhan Mantri Takai Siki Bharat Kongset Ashina Maki Official Oib Ahan Bakongset Ni Mapal Thuru Mantrali Ki Pauna Hai Maki Kongset Ashina Bharat Amso Japan Lainari Bamari Hena Chashil Halagani Japan Pradhan Mantri Asi Nimirhum Nigi Bharat Kongset Ngarang Nimidangwairam, New Delhi, the Tunglabani Pradhan Mantri Narendra Modi Nahairi, Bharat Amusung Japan, Gimarakta Akanana, Puna Tabuk Tominaba, Amasung, Malim Gitaka Tabuk Tominaba, Hengat Hangadoriba Japan, Pradhan Mantri, Sanita Kai Sika Hiram Kaya, the Pak Sana, or is Hanagadoriba to Kaurang Nangairi. Social media Takat Pogoral Amadashri Modi Nahai. Japan ki pradhan mantri asi ahan ma bharat khongchata mahang na thobu oina unagadori ba sida mahak nungai ba poi Sri Modi na hai bharat amasung japana bharat pacific lamdam amasung madi wang mod hena santi lehena ba tangdo leita hanna ba amasung nungai yai phaba purangna ba punna makata na hona khigani Employees Provident Fund Organization EPF ona senba jailisin ni kunmanga kuntaruki oina EPF ta thamlakpa senphom gi sendoi sa da nipan dasmik ani manga oiri haina lawthokre EPF scheme lising ni magalising amga chaba panyang khani thogi matung ina labor and employment mantralen ayaba pireba tungda sendogi sangasi lawthokhibani Organization Ashina Regional Amasu Journal Officing the High River Sendogi Sangasi Member or Reversing EPF account Hapsin Naba Kangan Kre. Nimin Inisum Jatarapa Kunmapan Suba National E Governance Mipangasi Zaypur de Loisi Legani. Loshin Migitharam da National E Governance Award Tri and Tokani. Manasingasi Kendram Suraja Sarkan E Governance Mapangal Kankal and Nabagidamak Lakot Lakiba Tongan Tongan Ba Taurang Singbu Sakang Dune Pibani. Lohsen bagi thoram amasung iga banas mana yang thopi ke thoram da kendra ki menteri doktor Jitendra Singh athobe mitung oigani. Ngasih lohsen mana mita digital governance amasung nongno thorak liba

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: गुड आफ्टरनून तराम नोकचरी संगाई चैनल की गुड आफ्टरनून लेडीज की थौरम नी मिंग लाइफ हम हाई बीयू तराम नोकचरी करी करम बॉफम सिंह पंडुक बीगनी
1: aina ma si pungdok jan ning di khu ji den de ji lambi je lang thaba an den de lambi ya hatre ba ko aju ga khu ji tilmi se khel jan la ga lang thaba ni den de ji lambi ji phajla samjhe lani ha na mana ate to thaje ro ro tiri ga ne ba aju ma si bhav ji ma bi chen di tre
0: hoi थबक पाइट से
1: गाड़ी पानेरमे लंबी चतनी
0: अथब अखोई लंग थबाल केंद्र की लंबी से सेंबीरक्पोशनु हाइबसिसु थमजरे थबक पाइखत्प हाइबसिदि नोंमनिनि द हेक्तमक पाइखत्प यादबगी अखोई मतम खरा चंगबो ओइरमबसु याय दुगा प्रजा सिंगना अखोई लबुक्तगी काखलक्प मतमद लैखोम गुमबसे हेक लोइना लौथुपिरगा काखलागदि लंबी दशु एकता हौबगी मसेगे प्रॉब्लम से थो ओइदोइ नेबको मयाम पुना ज्ञान तामिनारगा अफब माइकै मदा चंगसलक पोइरसनु मथंगी कॉलर मदा मुक चांस पिजगे कॉल तो बिरामबा थागचरी

शुक्रिया दोस्त उजीता। नमस्कार, आकाशवाणी इंफाल के संगाई चैनल जिसे आप ट्यून कीजिएगा 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर दोपहर के मनोरंजक कार्यक्रम में से गीतमाला के अंतर्गत प्रसारित ये है आपका कार्यक्रम सदाबहार गीत, वो गीत जो आपकी जिंदगी में बहार लाती है, जिसे आप सुन पाएंगे अपने दोस्त वैलेंटिना के साथ।

दोस्तों आज है कार्यक्रम सदाबहार गीत और जानिएगा हमारे गीतमाला के इन गीतों के जरिए क्यों है, क्या राज है जो छुपा हुआ है सदाबहार गीत बनने में। ये है आपका ही सदाबहार गीत। पहला गीत है लता मंगेशकर की आवाज़ में, आनंद बख्श की रचना और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के पिरोए हुए संगीत तकदीर फिल्म से, जिसमें नजर आई थी वो अभिनेत्री जिसे आप पुनः याद करोगे। हाँ, वो अभिनेत्री है फरीदा जलाल।

चलो बांटते हैं जिंदगी के हर वो सुख दुख, हर वो प्यार आपके लिए, आपके ही खास आपके लिए ही ये गीत है हमारी तरफ से, गीतमाला की तरफ से। ओ हंसनी, किशोर कुमार की आवाज में ये गीत है, मजरू की लेखन और राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में, और इस फिल्म का नाम है जहरीला इंसान।

अगर जीवन को देखा जाए तो एक माझी के नज़रिए से देखो तो झील पर जाती हुई वो नैया संभालती हुई अपनी डोर, यही तो है जीवन उसके लिए और शायद हम सब के लिए भी। किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत है फिल्म खुशबू से, गुलजार की अल्फाज और राहुल देव बर्मन के सुर में।

और एक मुसाफिर ये भी कहता जाता है, अपनी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते। परिचय फिल्म से ये गीत है। गीत के लेखक गुलजार और संगीत निर्देशक राहुल देव परमल। गीत के गायक किशोर कुमार।

0: नदियां से दरिया, दरिया से।
1: और दोस्तों, चलते हमें भी जाना है, और एक और मुसाफिर है जो ये इल्म रखता है कि पार कर जाएंगे नदिया से होकर दरिया। नमक हराम फिल्म से ये गीत है, किशोर कुमार की आवाज़ में, आनंद बख्शी की रचना और राहुल देव बर्मन के सुर में।

और दोस्तों, ये जिंदगी का रास्ता खुदा का बनाया हुआ रास्ता है, ये मानते हैं ना आप? तो इसमें जो चलने वाले आप और हम होते हैं, अगर एक बार बस चल दिए तो कौन रोकने वाला होता है, क्योंकि चलने वाले आप और हम हैं, है ना? अगला गीत जमीर फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में है, साहिल लुधियानवी की लेखन और सपन चक्रवर्ती द्वारा संगीत।

और शायद शायद जिंदगी में मिलती होगी सभी को किसी किसी को अपनी अनामिका, खोजती हुई अपनी अनामिका। ये गीत है किशोर कुमार की आवाज़ में, मजरू सुल्तानपुरी के द्वारा ये शब्द रचना और अपने संगीत से सवारा राहुल देव बर्मन ने। फिल्म का नाम है अनामिका।

और दोस्तों ये ज़िंदगी को कौन समझेगा, क्योंकि ज़िंदगी इतना हम समझने की कोशिश करते हैं उतनी ही गहराइयों में ये जाता है, कितना विशाल होता है और कितना अद्भुत होता है। तो अद्भुत ज़िंदगी को सलाम, आपको सलाम, नमस्कार गीतमाला की तरफ से।

0: Western music tabire hause Manipuri da pau tabirasi.
1: Akas bani imphal RK gorani na pau pazari. मुख्यमंत्री जुमनाम खेम चांग इम्फाल वेस्ट जिला द विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वी वी जी राम जी हौदोखरे जिला आज के सलाम थारोइजम इको टूरिज्म पाक्त पाक्तो थरम राज्य ताकि जन सम्मेलन दसु मुख्यमंत्री सरु याखी राज्य रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज विभाग ने सिन्ब थरम आर्ट एंड कल्चर मंत्री खुराइजम लोकेन एम एल ए सिंह डॉक्टर सापम रंजन सिंह कराम श्याम मकोक थोबा ऑफिसल सिंह सरु याखी बिष्णुपुर जिला केंद्रीय फ्लैगशिप प्रोग्राम वी वी जी राम जी बिष्णुपुर मिनी सेक्रेटरी कॉम्प्लेक्स पीपल्स रिसोर्स सेंटर हॉल जिला डेपुटी कमिश्नर पूजा इलांगम ए डी एम तोयजम उपेंद्रन हौदोखरे अखोगी बिष्णुपुर पाउमीन हाय हान एम जी एन आर जी एस आई खंगनारंब स्कीम थबक फंगदब काट पाइब मिओय अमना चाम कुन मंगानी थबक सुबामदी नेम लबद कुसुमल लुपा चहुम ओइब असिना स्कीम मसिं अपुंग ओइब पांदम ओइरी मसिना खुंगंगी पोंसी महिं हेना फगत हल्लगनी हाइरी इम्फाल जिरबाम नमिगी फिबम काहेन सोक्सिन बामसुं मालपुब गारी मसिं यामना चतपना ड्राइवर सिंगना तोइन लंबी यादबगी अचोब अवाब मायोक नरे हाइना ओल जिरबाम रो ट्रांसपोर्ट एंड ड्राइवर्स यूनियन हाइरी यूनियन असी प्रेसिडेंट एस प्रताप पाउमी हाई लंबी अस्तमरम चादना सेनखा यम लौबनासो ड्राइवर सिंह हेन अवा मायोक नहले पथा पुमथगन पोलम सिंह पुवा गाड़ी सिंह बु मतम सांगन लंबीदा पलहन बिदनबसु महांगना अपील तौरी नियम की वामुद लंबीदा आइन कायना साजिन गेट सिंह लौथोपिनबा महांगना सरकार पोनिंग सिंह सिल्ली मरक असिदा नेशनल हाई कंट्रा तरेट इम्फाल जिरबाम लंबीदा सेक्युरिटी की ngaksel galoina nongmoda tangai phatna changa polam sing puba gari cha mang yang khenga si imphal tamna thor kre ko ge jire bam pawmina police ke pauk palle dana hai imphal tamna thoki ba gari sing adugi manung da lpg puba gari kontra petrol puba gari tara mari diesel tara mapan alu puba gari nipan hida rang ta puba gari ahum transport ke gari kun cement puba gari tara ma thoi online ni pose puba gari manga amasu ate ate polam puba gari sing yauri हौजि जिरबाम तेंगर पुब गाड़ी तरह तुरु एल पी तरह अते गाड़ी पंदुन लेहौरी त्रिपुरा विधानसभा हम्फूम दुब फाउंडेशन देर पांथोखे थरम त्रिपुरा राज्यपाल इंद्र सना रेदीन नालू नाई विधानसभा है गणतंत्र अफब थी खुदमनी खोजल ताब्रब मैम खोजलनी राज्य की पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री रतन लाल नाथ नुमित त्रिपुरा की गणतंत्र की खोचत यामना चौथों चेनगे ओइबा पंदुप अमनि हाइना सिंथाखी सभा की विरोधी लुचिंगमना हाय विधानसभा की इतिहास असिदा राज्य गणतंत्र खुमांग चौसुलप अदुगी ममी तारी थरमदुदा हान सभा की अध्यक्ष ओइरम्ब सिंह अमसुंग पद्मसी फंगलब नरेश चंद्र देव बर्मम इकाय खुमना उठखी थरमदुदा एमएलए सिंह अमसुंग अते संगनायरेब कया सरु याखी नागालैंड की टूरिज्म अमसुंग हायर एजुकेशन मंत्री तेमजेन इमना अलोंगना साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवाइजर के नियनुगंग लोइना न्यू दिल्ली दा केंद्रीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह उन्होंने राज्य अदुदा लवेंडर प्रोजेक्ट हेन चाकोटलहनब अमसुंग अतोप ममल वांगब एरोमेटिक क्रॉप सिंग थानबगी मतांगदा खनखरे डॉक्टर जितेंद्र सिंह हाय राज्य अदुगी लवु सिंह वचुनब नुजु नुसागी फिबम येंगलगा वैज्ञानिक ओइब थबक सिंह पाखेटपना मेपाल तांगद हिंगम गमगनी लौमी सेंटो हेंगन हनगने खुंगंगी एंटरप्रेन्योरशिप चाकोट हनमगमगनी नेशनल रेन फेड एरिया अथॉरिटी ने सेल थालेदन पाइखटप वाइल्ड राइस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट असम चौना माइ पाकले प्रोजेक्ट असी मखाद नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी राज्य असी सोनीतपुर जिला की मनुंग चनब बोरजोली साइट पु बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइन है नोटिफाइड तौखरे केंद्र की लघु सिंह मंत्रालय ने हाय प्रोजेक्ट असी इं कुमजा कुनीथोदी पाखट पाहरपनी प्रोजेक्ट असी आई सी आर नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लान जेनेटिक रिसोर्सेस न्यू दिल्ली ना असम स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड के कुसम पाखटपनी भारत जापान तोा तोब लम यान से क्या सही तौनखरे मनुंग इकोनॉमिक इनर्जी सेक्यूरीटी फार्मास्यूटिकल डिफेंस ए आई यौरी पाउ लोजरी

0: हेलो
1: हेलो
0: तराम नोकचरी करम बमनी पुरी फिल्म से तभी गनी
1: गुड इवनिंग मैडम
0: गुड इवनिंग तराम नोकचरी करम बमनी पुरी फिल्म से तासिके हाय हाय सिनाम नव केशोर तराम नोकचरी करम ब फिल्म से तासिके
1: नाउ गेट यू हाय गुड मैडम
0: हाय
1: आई एम ताजन विद मी अखन के वोंपन हो यानी ने
0: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ

0: हेलो
1: हेलो,
0: गुड इवनिंग।
1: मैडम गुड इवनिंग अंकल से मजे मैडम आई नहीं जी ताने बिचुन के मजे की
0: हाय करम बा इसे ता सके
1: आ कई के नो मैं इको नक्स फिल्म देगी ने मैडम आराम बम जब ना ग पहाड़ी का छमी न प तानी दे से नंगम ब खुलियो हम ले नो ना पद जीरो तेरा नो ना बीजन तो कुमार की मैं एक दा नो मैं क्या पहाड़ी का फिल्म इसे बता जाके
0: हाय इसे हसी यम चुमना सॉरी बिरे दुदे इसे खुदो तमजरी मैं यम पुना तमिनर्सी
1: हाय थागचेरी
0: थागचेरी।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो
0: गुड इवनिंग।
1: हेलो
0: ताबी रेको
1: गुड इवनिंग आता से रंगा
0: होय मिंग लाइफ फ्रॉम हाई बियो
1: तो जरे बे खुद ने सुने क्या जी लश्कर मामू
0: होय करण बमनी पुरी फिल्म से ही तासी के
1: इधर मैं कोई लेखन तो उन फिल्म की ना
0: ना
1: वो एक पुष्प प्रदान के सब पा था जिस तो भी लेना जिस साल इधर उधर
0: होय
1: ताबे नहीं
0: लेखन तो उन फिल्म देगी
1: होय
0: yang phasaba isai makak su khanbire adudi isai se khudol tamjari mayam punna nungaina taminar si
1: khani khani ne
0: thagachari

0: भारत सरकार की मिनिस्ट्री अफ टेक्सटाइल्स की डेवलपमेंट कमिश्नर फॉर हैंडलूम की सेंथंग मखादा मणिपुर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड सिंधुना हथकरघा मेला स्टेट हैंडलूम एक्सपो लाली बथांगजा जुलाई मरी देगी इम्फाल इसकी नीलकुथी लेबा अरबान हत हौरगनी जुलाई तरह तरह फव चथक दब हैंडलूम एक्सपो असीदा पुण्य स्टॉल हुम्फू हांगनी वीवर सिंह आर्टिसन सिंह कोऑपरेटिव सोसाइटी सिंह प्रोड्यूसर कंपनी सिंह सेल्फ हेल्प ग्रुप सिंह जेएलजी सिंह फेडरेशन सिंह कॉर्पोरेशन सिंह अमसुंग एपेक्स सोसाइटी सिंहना अप्लाई तौबग लोइनना हथकरघा मेला असीद लाक्तुना सरु यानबा मणिपुर हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर एलांगबम जितेन्ना खंगलकली
1: मथंग व्हाट्सएपता खनबीरप इसे लौखचरी मेसेज थाबीरकली मरुप्ति पैलेस कंपाउंड गैब्रेला की अपोक्ति इमानी असुमन सुबीरली खोयदाबीदुन खनबीरकली इसे थबातोन फमसिदगी चित्रा सोरी सेंजम अनी अपुनब खोंजेल कुमुदीनी मोयरांगथेमना सैरेंब सोरी सेंजमना सैरांगब इसे मरुप्ना खोयदाजै हाइदुन खनबीरकली इसे लांथोक्चरी तामिनसी

लता मंगेशकर मदी मुकेश अनी की अपुन बखोंजल दा ताहन जक्री बगी रसी गलोई ना तोंगान तोंगान बा सैसक पसिंग देगी लोखच बगी खुदोल तमदुन ताहन जब लोई चरे आकाश बानी इंफाल हाउसिक नुमिदांग की पुंग तरा मखाई तारक पगलोई ना आकाश बानी इंफाल की थरम सिंह संदोक पलोई सिंजन बगी पुंग फम दु योरकले मरम असिना थरम ताबी रिबसिंग देगी कायने याथंग निजरी पीना बिरसी जय हिंद

आकाशवाणी के चैनल एफएम गोल्ड को सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज मैं हूं आपका दोस्त, आपका हमसफर शमीम खान, और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हर सिंगार, जहां हर बात में मोहब्बत की खुशबू होगी, हर एहसास में दिल की धड़कन होगी और हर लफ्ज में होगा मौसम का जादू। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि मोहब्बत का मौसम जब दिल में उतर जाए तो हर हवा गजल लगती है, हर कहानी शाम बन जाती है और हर सुबह किसी की मुस्कान जैसी लगती है। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम के पहले गीत के साथ, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने और फिल्म है बाकी सा।

मोहब्बत और मौसम दोनों का रिश्ता बड़ा पुराना है। बारिश हो तो किसी का हाथ पकड़ लेने का मन करता है, सर्दियां हो तो किसी की याद गर्म चाय जैसी लगती है, और बसंत वो तो जैसे दिल में नए फूल खिला देता है। इसीलिए शायद किसी शायर ने कहा है कि हवा में कुछ तो बात है जो तेरी याद साथ है। ये मौसम यूं ही हसीन नहीं, शायद इसमें तेरे इश्क की बरसात है। दोस्तों, कभी कभी मौसम बदलता नहीं बल्कि किसी की मौजूदगी ही पूरे मौसम को बदल देती है।

दोस्तों हर मोहब्बत का सबसे खूबसूरत लम्हा क्या होता है वो होता है जब कोई पहली बार अपने दिल की बात कहता है किसी के लिए कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं कहना आसान होता है तो किसी के लिए सालों लग जाते हैं सिर्फ इतना कहने में कि मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है दोस्तों मोहब्बत का इजहार बड़े-बड़े शब्दों से नहीं होता कभी एक मुस्कान कभी एक खामोशी और कभी सिर्फ आंखों से भी मोहब्बत की पूरी दास्तान कह दी जाती है

बारिश और मोहब्बत दोनों जब साथ आते हैं तो दिल खुद ब खुद मुस्कुरा उठता है। भीगी सड़कें, खिड़की पर गिरती बारिश की बूंदें और साथ में हो चाय का गर्म प्याला, और इन सब के बीच अगर किसी की याद आ जाए तो ये समझ लीजिए कि दिल सचमुच मोहब्बत में है। बारिश की हर बूंद में तेरा नाम सुनाई देता है। ये मौसम भी जाने क्यों हर बार तुझ तक ले जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों अगर आज की शाम आप किसी को याद करके मुस्कुरा दिए हों, अगर किसी पुराने एहसास ने आपके दिल पर फिर से दस्तक दी हो, या फिर आपने मन ही मन किसी से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया हो, तो समझिए हमारा ये कार्यक्रम सफल रहा। चलते चलते एक छोटी सी बात, मोहब्बत कभी आवाज नहीं करती, बस दिल में चुपचाप अपना घर बना लेती है। जिसे सच्चा प्यार मिल जाए उसे जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत मिल जाती है। दोस्तों कार्यक्रम के अगले गीत के साथ मैं आपका दोस्त शमीम आपसे इजाजत चाहता हूं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होगा।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई है और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह हमला यूक्रेन द्वारा रूस के आम लोगों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजेलिस स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits. He said, both the sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said, India and Japan today reached agreements on several areas, such as economic security, AI, defense and health, that will make the partnership futuristic and limitless.
1: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं फ्रेंड्स भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है
2: In her address, Prime Minister of Japan Sanae Takaichi said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. Ms. Takaichi said, through the Power Asia initiative, it is working to translate this vision into a concrete action. On the occasion, both Prime Ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's fourth vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. Earlier, India and Japan today exchanged agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals and AI. India and Japan today agreed to deepen cooperation on strategic crude oil stockpiling, petroleum reserve mechanisms and maritime energy transport value chains. It comes after annual summit-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. According to a joint statement issued by the Ministry of Petroleum and Natural Gas of India and Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry on Energy Resilience, both the sides expressed their shared intention to work as responsible powers and major energy-consuming countries in Asia to strengthen energy resilience amid current geopolitical uncertainties. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today said that India is rapidly expanding its refinery capacity. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Puri informed that in the next 6 to 12 months, the country's refining capacity will be brought to 300 million metric tons per annum. He said that the first greenfield refinery is being established after a gap of 10 years. Union Minister for Jal Shakti, C.R. Patil, today reiterated that the rejuvenation of River Ganga is a shared national responsibility, requiring sustained collaboration among central ministries, state governments, urban local bodies, scientific institutions and local communities. The minister said this while chairing the 19th meeting of the Empowered Task Force, that is ETF, on River Ganga. He emphasized that strengthening sewage infrastructure, promoting reuse of treated wastewater and conserving wetlands and biodiversity will collectively accelerate the vision of an Aviral and Nirmal Ganga. He added that these acts will also ensure long-term water security and ecological resilience across the Ganga Basin. Vice President C.P. Radhakrishnan interacted with 40 participants of MP Lead Fellows at Uprashtrapati Bhavan today. In his address highlighting the importance of constitutional values, Mr. Radhakrishnan said, democracy flourishes when citizens uphold their duties along with their rights. The Vice President urged the fellows to learn with curiosity, innovate fearlessly and remain committed to the larger national interest, expressing confidence that the MP Lead Fellowship would nurture future nation builders committed to a developed and self-reliant India. The Ministry of Civil Aviation today launched the Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. The upgraded digital platform aims to strengthen health surveillance of international travelers through real-time coordination among health, immigration and surveillance agencies for early detection of at-risk passengers. And that is the end of this news bulletin.
3: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Prachi Priya.
1: Namaskar, karobari khabron ke saath Market Mantra hazir hai. Shrotaon, aaj ke ank mein desh videsh ki aarthik gatividhiyon ke saath saath arthvyavastha aur share bazaar ki halchal par nazar dalenge, saath hi charcha bhi karenge. Aaj charcha karne ke liye studio mein hamare samaksh aamantrit hain aarthik visheshagya उदयन जी. उदयन जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: धन्यवाद.
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: थैंक यू प्राची. Benchmark domestic indices rise, Sensex adds nearly 580 points, Nifty settles at 24,176. Indian Japan exchange agreements in fields of including economic and energy security, pharmaceuticals and AI. And global crude oil prices declined.
1: घरेलू शेयर बाजार में बढ़त, सेंसेक्स 580 अंक बढ़ा, निफ्टी 24,176 पर बंद हुआ. भारत और जापान ने आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए और कच्चे तेल के वैश्विक दाम घटे.

0: And before we begin the program, an important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और श्रोताओं आइए अब रुख करते हैं और जानते हैं कि आज दिन के अंतराल में हमारे प्रमुख शेयर सूचकांकों ने कैसा प्रदर्शन किया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक आज 0.7% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 579 अंक बढ़कर 77,502 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 170 अंकों की बढ़त के साथ 24,176 पर आ गया। विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक में 0.5% और स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 1.2% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई। इससे पहले बाजार सकारात्मक रुख के साथ खुले और लगातार दूसरे दिन भी इनमें बढ़त रही। कच्चे तेल की कीमतों में कमी और सकारात्मक भू राजनीतिक रुझानों के कारण निवेशकों का आत्मविश्वास बना रहा।
0: Benchmark domestic equity indices ended over 0.7% higher today. The Sensex rose 579 points to close at 77,502. The Nifty gained 170 points to settle at 24,176. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 index added 0.5% and the Small-Cap 100 index climbed more than 1.2%. Earlier markets opened on a positive note and extended their upward momentum for the second consecutive session. Investor sentiment remained upbeat, supported by softer crude oil prices and positive geopolitical developments.
1: Sensex mein shamil 30 mein se 23 companies ke sharon mein badhat darj ki gayi. Sabse acha pradarshan karne wali companies ke sharon mein Infosys 5.5% se adhik, wahin Tech Mahindra aur Tata Consultancy Services mein lagbhag 4.5% ka uchhal aaya. Udhar kharab pradarshan karne वाली कंपनियों के शेयरों में लार्सन एंड टूब्रो 0.8%, मारुति में लगभग 0.5% और एक्सिस बैंक में 0.3% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई।
0: In the sectoral indices on the BSE, 20 out of 25 sectors ended in positive zone. Among the key gainers, IT climbed almost 4.4%, focused IT rose 4.3% and consumer durables as well as realty added over 1.4%. In contrast, capital goods fell over 0.7%, telecommunications slipped nearly 0.7% and power lost over 0.6%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,536 companies advanced, shares of 1,740 companies declined and shares of 182 companies remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 15 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए 39 पैसे पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 101 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। उदयन अगर हम आज के

0: ट्रेजेक्टरी की बात करें कि आज किस तरीके से मार्केट ने प्रदर्शन किया और क्या प्रमुख कारक रहे जिस वजह से मार्केट का ये रुझान हमें देखने को मिला, तो आप क्या कहेंगे?
1: देखिए, ये मतलब सारी जो बातें हैं एक चीज के साथ हम आराम से जोड़ सकते हैं, वो ये है कि तेल से जुड़े हुए सुर्खियां क्या रही, हेडलाइंस क्या रही, वो सब पॉजिटिव रही हैं कि जैसे अपने
0: दाम घट गए,
1: कुछ प्रोग्रेस इनडायरेक्ट टॉक्स में के रिपोर्ट्स आए, कतर के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। इसके अलावा और कुछ रिपोर्ट्स आए कि कुछ सुपर टैंकर्स जो हैं सऊदी अरब का तेल तकरीबन 2 मिलियन बैरल्स के आसपास वर्थ ऑफ ऑयल वहां से निकला है। ये बहुत बड़ी तादाद है जो हमारे यहाँ तो नहीं आ रही है, ये चीन जा रही है और कुछ और देशों में जा रही है, पर ये एक फ्लो ऑफ गुड पॉजिटिव हेडलाइंस, मतलब बैड न्यूज नहीं आ रहा है। और उसका इमीडिएट इम्पैक्ट सबसे पहले करेंसी मार्केट से एक्सपेक्टेशन इन्फ्लेशन, वो सारा एक डोमिनो इफेक्ट पॉजिटिव, इसको वर्चुअस साइकिल बोलते हैं, वो उस तरीके से घूमता है। और आप देखेंगे कि हर जगह में कुछ लोग ये कह सकते हैं कि देखिए हम रुपए के वैल्यू में वो बात नजर नहीं आ रही, पर आरबीआई ओवरऑल एक मैनेजमेंट कर रही है जिसमें वो फॉरेक्स रिजर्व्स, आपका करेंसी में मूवमेंट ज्यादा ना हो, उसके बारे में है। तो वहां पे उसकी बात को थोड़ी देर के लिए हम अलग रखना पड़ेगा, पर इसके अलावा जो है बाकी जो चीजें हैं आप सब जगह में एक इट्स रिकूपिंग, जो स्लाइड हुआ था वो ऐसा लग रहा है कि वापस आ रहा है।
2: Udayan, let's talk about specific sectors. We've seen a rally today in the IT sector. It's a very interesting trend that we've been seeing in the IT sector. You know, if you look at it overall, in the last 20 trading sessions, it tanked 17%. In the last 4 trading sessions, it was down 7%. But today, if I talk about Nifty in IT index, there is a rally of 4.64%. What's driving this rally in the IT sector? Because that's one of the major reasons we have seen the Sensex and the Nifty, you know, ending in green.
1: So, you're so right. And a lot of these IT stocks, by the way, are large caps. And, you know, their capitalizations are large.
2: Yes.
1: And there's this whole theory going in, and I buy into that theory. Experts are saying that a lot of the exodus of money that has happened is FPI money has been, they were invested in large caps, whereas the domestic institutions went in and bought mid cap and small cap. So two different sectors of the market have got affected. So at some point, you know, when you keep buying, rather selling, it happens with buying also. You suddenly realize, maybe we have done enough. Maybe we need to do the different thing. The other very interesting thing that has happened today is, maybe it happened yesterday, but it came to my notice today, is two very prominent brokerages, or shall we say research firms.
2: Okay.
1: Maybe brokerages would be a rather appropriate word. They have come out with notes where they are saying that it's not so bad, you know. Hey, it's not so bad after all. It's good, you know. They're going to bounce back. So, what I'm trying to hint,
2: it has affected the sentiments.
1: Yeah, subtly that sometimes, you know, the disclaimer that you gave right in the beginning of the program. So every investor needs to think through this little bit of critical thinking, that collective wisdom, yes, it's important.
2: Yes.
1: But sometimes that wisdom has to work for you. If it doesn't make sense to you, maybe you should be thinking harder. So basically what I'm trying to say is that it is, now they've decided that, it's IT, Indian IT deserves love, and that's why it's getting it.
0: Right. Udayan, ye to hamare IT sector ki baat rahi, lekin hum agar FIIs ki nikasi pe ek bar gaur kare, to humne agar pichle satr ko agar hum dekhe, to usme bhi कंपैरेटिवली जो है वो कम निकासी हुई है, और कॉन्स्टेंटली जो DIIs हैं वो तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक मोमेंटम बांधता है मार्केट्स को अप करने के लिए।
1: देखिए, इसमें एक और थीम भी आ जाती है, जब कभी सबने तब भी कहा था और अब भी ये बात है कि जब भी उनको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को लगेगा कि नहीं, ये जो AI, सो कॉल्ड AI थीम है, जहां पे

0: कि डोमेस्टिक जो पार्टिसिपेशन आप और हम जैसे लोग और इस प्रोग्राम को सुनने वाले लोग जो भारत की प्रगति में एक हिस्सेदारी ले रहे हैं
1: जी,
0: वो एक बहुत जबरदस्त कहानी है जिसके बारे में उतनी बात अभी तक नहीं हुई जितनी होनी चाहिए, हो रही है, बट दिस इज अ ट्रिमेंडस स्टोरी विच प्रोबेबली नीड्स मोर प्ले देन इट्स गेटिंग
1: राइट. Then would you say that, you know, we India and Japan, the Japanese Prime Minister is of course in India on a 3-day visit, and a slew of agreements were signed, and there were memorandum of cooperations today that were agreed upon. So would you say that, and Japan has also announced $10 billion fresh investment in India across AI, defense technology and energy security. Would you say that that is also, you know, added a bit to the momentum, positive momentum in the markets, or is it a different
0: thing? I don't think people in the markets would be so...
1: Okay.
0: See, these things will play out in the future.
1: Right.
0: Markets typically don't look so far into the future.
1: Right.
0: They reward, if you see unencumbered cash flows coming in, they will immediately go and reward. One can always argue that AI is out in the future and so on and so forth. So sometimes it's also a FOMO, you know, fear of missing out. You know, you don't want to miss out on something which is once in a generation. So wisdom is different, but that is important, the things that you're talking about, because Japan has been doing business with us for ages now.
1: Ages, yes.
0: And if you ask me, in my opinion, that relationship has been underdone. The bromance or whatever you want to call it, that relationship that we have, it probably has been underserved despite whatever breadth it has. And it probably is the time to make up for lost time.
1: Yeah.
0: And it's not a day too late.
1: Right. We will talk about the India-Japan, agreements a little later in the program. But right now, I think, Prachi, let's, why don't you talk about the Asian market?
2: Bilkul, Anubha. Shrotaon, aaiye ruk karte hain Asia bazaar ki taraf. प्रमुख एशियाई शेयर सूचकांकों में आज गिरावट आई. चिप सेक्टर में गिरावट की वजह से दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लगभग 8% फिसला. जापान का निकेई 2.5%, चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 2% और ताइवान का ताइएक्स 0.5% से अधिक लुढ़का. वहीं सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 1% से अधिक और हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक लगभग 0.8% ऊपर बढ़ा. लगभग 8% हम कॉस्पी में देख रहे हैं गिरावट. महोदय, किस तरीके से आप इसे देखते हैं और ये क्यों किस तरीके से आ रहा है, आप प्लीज इसे बताएं.
0: देखिए, वो एक रन अप था जो बिल्कुल तेजी के साथ होता चला गया. और कई बार क्या होता है, चिप्स आप जैसे हमारे भारतीय बाजारों में देखते हैं कि पहले एक सर्टन सेक्टर में आपको पसंद आने लगे लार्ज कैप, फिर आपने कहा कि नहीं नहीं लार्ज कैप तो ये तो बहुत महंगे हो गए, थोड़ा और नीचे चलते हैं, मिड कैप में चलते हैं. तो उस तरीके से है, जब आपने देखा TSMC और डच कंपनी का नाम मैं भूल रहा हूँ जो डिजाइन करती है चिप्स, तो वो जब आपको लगा कि नहीं नहीं ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप सैमसंग और हाइनेक्स पे चले गए जो कि आपके दे आर आउटस्टैंडिंग द लीडिंग मेकर्स, पर आप उस वहां पे फोकस करने लग गए. और उसके अलावा तब हेडलाइंस भी ऐसी थी, एनवीडिया ने हैंडशेक किया, तो उससे आपको सारे जो कंपनीज हैं आपस में एक दूसरे के साथ एक जबरदस्त हैंडशेक कर रहे हैं.
2: मैं यही बल्कि कहना भी चाह रही थी कि अभी यही बाजार है जो अपनी ऊंचाइयों पर भी गया और वही बाजार है जो आज हम देख रहे हैं.
0: तो जहां पर भी अगर जब हेडलाइन जब आप फ्यूचर की तरफ देखते हैं, जैसे अब थोड़ी देर पहले बात होती थी, व्हेन थिंग्स आर आउट इन द फ्यूचर, इट्स अ ग्रोथ सेक्टर, आपको नहीं मालूम कि ये आप किसी को कह नहीं सकते कि आज ये आपने पिछले 3-4 महीने पहले ये बोला था, ये क्यों नहीं हुआ, ये दिस इज नॉट राइट 4 months डाउन द लाइन, इट्स प्रोबेबली वी आर टॉकिंग अबाउट 3-4 years चीजें होंगी. सो पीपल आर रेजिंग मनी राइट नाउ. तो उसमें वहां पे जब आपको हेडलाइन ऐसा कुछ आता है, बिकॉज ये कन्विक्शन जो है, आप एक जिसे लीप ऑफ फेथ कहते हैं ना, मेरे को मालूम नहीं यहाँ पे सर्कस कितने लोगों ने रियल लाइफ में देखी है, तो वहां पे ट्रेपीज आर्टिस्ट होते हैं जो हवा में झूलते हैं, तो एक आदमी छलांग मारता है या लेडी छलांग मारती है, उनको पकड़ा जाता है, दूसरे लटक रहे होते हैं वो पकड़ते हैं, उसको लीप ऑफ फेथ बोला जाता है. तो ये लीप ऑफ फेथ की तरह है जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने कितना कन्विक्शन है, आपके फेथ है,
2: यानी सुर्खियां पढ़ करके
0: जी आपको यह है कि मैंने वो छोड़ दिया है जो मैंने पकड़ी थी और मेरा जो साथी है वो मेरे को पकड़

0: वैसे तो नीचे नेट है जमीन पर दिस इज कॉल्ड द लीप ऑफ फेथ. तो लीप ऑफ फेथ जब डगमगाने लगती है या उसमें कमजोरी आ जाती है तो आप वो देख रहे हैं जो आज आप देख रहे हैं, क्योंकि कुछ सुर्खियां ऐसी निकली कल जिसके वजह से देयर इज दिस होल रिविजन कि नहीं मे बी वी आर जस्ट गेटिंग टू बुलिश आउट देयर. तो ये चीजें जो एडजस्टमेंट होती है, समटाइम्स यू आर मूविंग ऑन द फ्यूल्ड बाय सेंटिमेंट. तो सेंटिमेंट का जो फ्यूल है जब वो थोड़ा कम होता है तो आपका गियर लोअर गियर में आ जाता है.
1: भारत और जापान ने आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की. संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और जापान आज विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से हैं. दोनों ही देश आर्थिक सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा के महत्व को समझते हैं.
2: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं. इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोड मैप तैयार किया है. इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे. एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी.
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि प्रौद्योगिकी साझेदारी भारत जापान सहयोग का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होगा.
2: टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी. इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है. भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं. जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा.
1: उदयन, अभी प्रधानमंत्री को हमने सुना, उन्होंने कहा कि जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर जो क्षमता है उसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति शक्ति देगा, क्योंकि वैश्विक स्तर पर हम भी ऑफकोर्स कम्पीट कर रहे हैं, तो हमारी जो एक परिकल्पना है विकसित भारत की उसको किस तरीके से ये साकार करने में मददगार रहेगा.
0: देखिए, कई बार कई चीजें हैं, आपको जीरो से स्टार्ट करने में टाइम लगता है. तो अगर आप वो पार्टनरशिप से करते हैं तो जहां पे आपके दूसरे एक पार्टनर कंट्री हैं जिस उनके जो स्ट्रेंथ्स हैं, उन जो जहां पे वो सक्षम ज्यादा है हमसे, वो चीजें वो अपने टेबल पे लाते हैं और हम हमारी जो स्ट्रेंथ्स है, हमारी जो शक्ति है, हमारी जो कैपेबिलिटी, वो हम मेज पे लाते हैं. तो ये वो वाली अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि जहां पे हमारे यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई जो स्ट्रेंथ्स है, उनकी जो डिजाइनिंग जो स्ट्रेंथ्स है, उसको मिलके हम वो चीजें प्रोड्यूस करें. क्योंकि देखिये, एक पर्टिकुलर देश का नाम ना लेते हुए ये कहना जरूरी है, दोनों देश दूध के जले हैं
3: जी.
0: तो छाछ भी वो फूक फूक के पी रहे हैं
3: जी.
0: ठीक है, तो वो क्रिटिकल मिनरल से जुड़ा हुआ जो एक्सपीरियंस है, दूसरी चीजें जो है, उसको दिमाग में रखते हुए ऑब्वियसली ये इन्फ्लुएंस कर रहा है. और ये जरूरी भी चाहिए आपको, क्योंकि यू कैन नॉट जस्ट स्टॉप. कार प्रोडक्शन बंद हो गया या कुछ और हो गया, डिस्ट्रप्शन हो गया, जस्ट बिकॉज कोई एक स्टेटमेंट चली गई, तो वो उसके ये वो तो छोटी सी बात है. ये जरूरत भी है और ये लेवरेज किया जाए. जैसे कि मैंने कहा, ये अंडर सर्व था, ये अब वहां पे पहुंच उस पायदान में जा रहा है, उस स्तर में जा रहे हैं जहां पे इसको होना चाहिए था.
3: राइट, लेट्स मूव ऑन टू अनदर रिलेटेड स्टोरी. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सेड दैट इंडिया जापान रिलेशंस आर ट्रूली वेरी स्पेशल एंड देयर आर मेनी शाइनिंग एग्जांपल्स ऑफ द सक्सेस ऑफ द इकोनॉमिक पार्टनरशिप. एड्रेसिंग इंडिया जापान जॉइंट इकोनॉमिक फोरम इन न्यू दिल्ली दिस इवनिंग, मिस्टर मोदी सेड व्हेन जापान्स एक्सपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट कंबाइंड विद इंडियाज स्पीड एंड स्केल, द एंटायर वर्ल्ड बेनिफिट्स.
2: कुछ ही महीने पहले हमने टैक्सेशन, गवर्नेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स किए. हम हर क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल रहे हैं और कई महत्वपूर्ण सेक्टर्स में इंसेंटिव दे रहे हैं जिसका लाभ आप सभी उठा सकते हैं. और यही कारण है कि लगातार पिछले 4 वर्षों से जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन JBIC का सर्वे दिखाता है कि भारत जापानी बिजनेस के लिए मोस्ट प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन रहा है.
3: इन हर एड्रेस प्राइम मिनिस्टर

आकाशवाणी के चैनल एफएम गोल्ड को सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है. अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत में साइकिलिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। बैठक में साइकिलिंग के लिए व्यवस्थित रास्ता बनाने पर भी चर्चा हुई। इसमें जमीनी स्तर पर प्रतिभा की पहचान और समुदाय की भागीदारी से लेकर हाई परफॉर्मेंस प्रशिक्षण, खेल विज्ञान, बेहतरीन कोचिंग और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण शामिल है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई है और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ। फीफा विश्व कप में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। ये मैच अमेरिका के इंगलवुड में लॉस एंजल्स स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi yesterday, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits. He said, both the sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said, India and Japan reached agreements on several areas, such as economic security, AI, defense and health, that will make the partnership futuristic and limitless.
1: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं फ्रेंड्स भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है
2: In her address, Prime Minister of Japan Sanae Takaichi said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. Ms. Takaichi said, through the Power Asia initiative, it is working to translate this vision into a concrete action. On the occasion, both the Prime Ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's fourth vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. India and Japan agreed to deepen cooperation on strategic crude oil stockpiling, petroleum reserve mechanisms and maritime energy transport value chains. It comes after annual summit-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi yesterday. According to a joint statement issued by the Ministry of Petroleum and Natural Gas of India and Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry on Energy Resilience, Both the sides expressed their shared intention to work as responsible powers and major energy-consuming countries in Asia to strengthen energy resilience amid current geopolitical uncertainties. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri has said that India is rapidly expanding its refinery capacity. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Puri informed that in the next 6 to 12 months, the country's refining capacity will be brought to 300 million metric tons per annum. He said that the first greenfield refinery is being established after a gap of 10 years. Union Minister for Jal Shakti C.R. Patil yesterday reiterated that the rejuvenation of River Ganga is a shared national responsibility requiring sustained collaboration among central ministries, state governments, urban local bodies, scientific institutions and local communities. The minister said this while chairing the 19th meeting of the Empowered Task Force on River Ganga. He emphasized that strengthening sewage infrastructure, promoting reuse of treated wastewater and conserving wetlands and biodiversity will collectively accelerate the vision of an Aviral and Nirmal Ganga. He added that these acts will also ensure long-term water security and ecological resilience across the Ganga basin. Vice President C.P. Radhakrishnan interacted with 40 participants of MP Lead Fellows at Uprashtrapati Bhavan yesterday. In his address highlighting the importance of constitutional values, Mr. Radhakrishnan said, democracy flourishes when citizens uphold their duties along with their rights. The Vice President urged the fellows to learn with curiosity, innovate fearlessly and remain committed to the larger national interest, expressing confidence that the MP Lead Fellowship would nurture future nation builders committed to a developed and self-reliant India. In Jammu and Kashmir, the first batch of pilgrims for the Sri Amarnath Ji Yatra yesterday reached the twin base camps at Nunwan in the Pahalgam area of Anantnag district and Baltal in Ganderbal district under tight security. The 57-day pilgrimage to the Holy Grave Shrine was formally flagged off from Jammu in the early hours by Lieutenant Governor Manoj Sinha. In the FIFA World Cup, Spain will take on Austria in a round of 32 match at the Los Angeles Stadium in Inglewood, US at 12:30 a.m. Indian Standard Time. In other round of 32 matches, Portugal will clash with Croatia in Toronto, Canada today at 4:30 a.m. IST. And that is the end of this news bulletin.

एक मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयति। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और निशिगंधा में आज जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है यादों की बारात, आवाज है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आज आपके साथ हूं मैं जयती। निशिगंधा में अगला गीत फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले। आवाज है सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की।

शब की पेशानी पे ठहरा दर्द की स्याही में डूबा चांद, दिन की धूप ने जो ना छोड़ा रात ने उसको सौंपा चांद। शब की पेशानी पे ठहरा दर्द की स्याही में डूबा चांद, दिन की धूप ने जो ना छोड़ा रात ने उसको सौंपा चांद। भीड़ के जंगल से निकला रेत में तन्हा भटका चांद, याद की परछाई लिपटी देर तलक सहमा था चांद। नींद के सौदे हार गया जब, नींद के सौदे हार गया जब आंखों की देहरी आया चांद। मैंने पूछा कुछ भी नहीं था, मैंने पूछा कुछ भी नहीं था, गुपचुप दिल को पढ़ता चांद। एक ही चेहरे की खातिर, एक ही चेहरे की खातिर हर मौसम में भटका चांद, हर मौसम में भटका चांद। रात के आखिरी सन्नाटे में खुद से मिलता जुलता चांद, रात के आखिरी सन्नाटे में खुद से मिलता जुलता चांद। शब की पेशानी पे ठहरा दर्द की स्याही में डूबा चांद, दिन की धूप ने जो ना छोड़ा रात ने उसको सौंपा चांद, रात ने उसको सौंपा चांद। अगला गीत फिल्म का नाम है सनम बेवफा, आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अगला गीत फिल्म का नाम है पारसमणि, आवाज है लता मंगेशकर और कमल बड़ौत की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

और अब वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी एक बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आवाज है लता मंगेशकर और उदित नारायण की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में

0: भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने शिलांग में राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मेघालय शिक्षक प्रशिक्षण अकादमी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अकादमी लंबे समय से चली आ रही कमियों, खासकर शिक्षकों के प्रशिक्षण से जुड़ी कमियों को दूर करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री रक्षा खड़से ने साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत में साइकिलिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। बैठक में साइकिलिंग के लिए व्यवस्थित रास्ता बनाने पर भी चर्चा हुई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारत श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह श्रृंखला अगले महीने की 15 से 27 तारीख तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट अगले महीने की 15 तारीख से गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट अगले महीने की 23 तारीख से कोलंबो के सिंगलीज स्पोर्ट्स क्लब में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयति। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। गीत सुहाने की इस महफिल में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है बहारों के सपने, आवाज है लता मंगेशकर की।

तुम आना एक रोज, तुम आना एक रोज मुझसे मिलने, तुम आना एक रोज मुझसे मिलने, मैंने बहुत संभाल कर रखा है तुम्हारे हिस्से का वक्त, मैंने बहुत संभाल कर रखा है तुम्हारे हिस्से का वक्त, तुम आना एक रोज मुझसे मिलने। और अगला गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है आस का पंछी।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और गीत सुहाने में अब जो अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म का नाम है जंगली आवाज मुकेश और आशा भोसले की

तेरी हर बात को दिल पर उतारा हमने, तेरी हर बात को दिल पर उतारा हमने, जिंदगी हार दी खुद को संवारा हमने। रोज चेहरे पे नए रंग उतर आते हैं, रोज चेहरे पे नए रंग उतर आते हैं, तेरा किस्सा है ये हर बार छुपाया हमने। एक शोला सा उठा था कभी बस्ती के तले, एक शोला सा उठा था कभी बस्ती के तले, वक्त रहते ही उसे खुद से जलाया हमने। बात अधूरी ही सही मगर कहते रहे, बात अधूरी ही सही मगर कहते रहे, वक्त की चाल को चुपचाप निभाया हमने। तेरी हर बात को दिल पे उतारा हमने, जिंदगी हार दी खुद को संवारा हमने, जिंदगी हार दी खुद को संवारा हमने। और अब जो फिल्म, जिस फिल्म का गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उसका नाम है बॉम्बे टू गोवा, आवाज है किशोर कुमार की।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। गीत सुहाने में अब जो गीत आप सुनेंगे फिल्म का नाम है आन मिलो सजना, आवाज है लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

वो जो कहते हैं कि पहले अक्ल से काम लेते वो जो कहते हैं कि पहले अक्ल से काम लेते उन्हें कौन समझाए मोहब्बत में हिसाब नहीं होते वो जो कहते हैं कि पहले अक्ल से काम लेते उन्हें कौन समझाए मोहब्बत में हिसाब नहीं होते सोच समझकर तो बस रिश्ते निभाए जाते हैं सोच समझकर तो बस रिश्ते निभाए जाते हैं दिल जहां उतर आए वहां सवाल नहीं होते हमने चाहा तो किसी शर्त का सौदा न किया हमने चाहा तो किसी शर्त का सौदा न किया इश्क में मुनाफे के अंदाज नहीं होते इश्क में मुनाफे के अंदाज नहीं होते वो जो कहते हैं कि पहले अक्ल से काम लेते उन्हें कौन समझाए मोहब्बतों में हिसाब नहीं होते इश्क को इश्क ही रहने दो दलीलें न गढ़ो इश्क को इश्क ही रहने दो दलीलें न गढ़ो आग के सामने अक्सर बयान नहीं होते आग के सामने अक्सर बयान नहीं होते

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, और अब जो गीत आप सुनेंगे आवाज है यशुदास की और फिल्म का नाम है सुनैना। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

और वक्त आ चला है एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारी और आपकी मुलाकात होगी 3:10 पर कार्यक्रम होगा रात सुरमई छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ फिल्म का नाम है संगम आवाज है लता मंगेशकर और मुकेश की सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेवार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके।

0: मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने शिलांग में राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मेघालय टीचर ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये एकेडमी लंबे समय से चली आ रही कमियों, खासकर शिक्षकों के प्रशिक्षण से जुड़ी कमियों को दूर करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत में साइकिलिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। बैठक में साइकिलिंग के लिए व्यवस्थित रास्ता बनाने पर भी चर्चा हुई। सीरिया में दमिश्क के कैफे में विस्फोट में लगभग 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह विस्फोट एक कैफे के अंदर हुआ। यह कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेवारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। थाईलैंड के उत्तर पूर्वी उगदहान प्रांत में तीर्थयात्रा पर जा रहे 9 भिक्षुओं की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। सूत्रों के अनुसार 11 साल के एक लड़के ने पिकअप ट्रक से इन भिक्षुओं को टक्कर मार दी। अधिकारियों ने बताया कि उगदहान प्रांत के कुल 35 भिक्षु तीर्थयात्रा पर थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भारत श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह श्रृंखला अगले महीने की 15 से 27 तारीख तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट अगले महीने की 15 तारीख से ग्वालियर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Ashish. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi yesterday, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits. He said both sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said India and Japan reached agreements on several areas such as economic security, AI, defense and health that will make the partnership futuristic and limitless.
2: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
1: In her address, Prime Minister of Japan Sanae Takaishi said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. Ms. Takaishi said, through the Power Asia initiative, it is working to translate this vision into a concrete action. On the occasion, both Prime Ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's 4th vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. India and Japan agreed to deepen cooperation in strategic crude oil stockpiling, petroleum reserve mechanisms and maritime energy transport value chains. It comes after annual summit level talks between PM Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaishi in New Delhi yesterday. According to a joint statement issued by the Ministry of Petroleum and Natural Gas of India and Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry on Energy Resilience, both sides expressed their shared intention to work as responsible powers in major energy consuming countries in Asia to strengthen energy resilience amid current geopolitical uncertainties. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri yesterday said that India is rapidly expanding its refinery capacity. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Puri informed that in the next 6 to 12 months, the country's refining capacity will be brought to 300 million metric tons per annum. He said that the first greenfield refinery is being established after a gap of 10 years. Union Minister for Jal Shakti C.R. Patil yesterday reiterated that the rejuvenation of River Ganga is a shared national responsibility requiring sustained collaboration among

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयति। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में जो पहला गीत आप सुनने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है सौदागर, आवाज है कविता कृष्णमूर्ति, मनहर और सुखविंदर की।

सुन रहे हैं रात सुरमई और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। दिल ने धड़क कर जो कहा याद आया, किसी अपने का गिला याद आया। आज बोझिल थी जरा सांसों की चाल, तू परेशानी में था याद आया। दिन किसी तरह से काटा मैंने, फिर तेरा रात का वादा याद आया। लोग मिलते रहे चेहरे बदले, लोग मिलते रहे चेहरे बदले, फिर कोई भूला सा शहर याद आया। बात कहने की हिम्मत थी लेकिन जब वो चला ही गया याद आया। फूल के नीचे बैठी रही देर तलक, फूल के नीचे बैठी रही देर तलक, दिल बहुत रोया तब याद आया, दिल बहुत रोया तब याद आया। और अगला गीत फिल्म का नाम है कोयला, आवाज

हवाओं ने सिखाया कि झुकना जरूरी है, हर शाख को मौसम में ढलना जरूरी है। जो वक्त की धूप से आंखें चुराता रहा, उसे अपने हिसाए में जलना जरूरी है। रिवायतों की धूल जब सांस रोकने लगे, तो कुछ सवालों का उगना जरूरी है। जो कल की लकीरों को तकता ही बैठा हो, उसे आज की मिट्टी में चलना जरूरी है। हवाओं ने सिखाया कि झुकना जरूरी है, हर शाख को मौसम में ढलना जरूरी है। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है किशोर कुमार की, फिल्म का नाम है ड्रीम गर्ल।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है गुप्त, आवाज है अलका याग्निक और उदित नारायण की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है सनम बेवफा, आवाज है लता मंगेशकर की।

और वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का। तो फिर मिलने के वादे के साथ आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है आज का अर्जुन, आवाज है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों तथा प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत में साइकिलिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। बैठक में साइकिलिंग के लिए व्यवस्थित रास्ता बनाने पर भी चर्चा हुई। सीरिया में दमिश्क के कैफे में विस्फोट में लगभग 9 लोगों की मौत हो गई है। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह विस्फोट एक कैफे के अंदर हुआ। ये कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 20 लोग घायल

3:10 हुए हैं। दोस्तों आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हमराही, और आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। कहते हैं जिंदगी में कुछ मौसम ऐसे भी आते हैं जब दिलों के बीच की दूरियां खुद ब खुद मिटने लगती हैं और मुलाकातों की खुशबू फिजाओं में घुल जाती है। इंतजार के बाद आने वाले ऐसे ही खूबसूरत पलों का एहसास कराता है फिल्म लवर्स का ये खूबसूरत सा गीत, आवाज लता मंगेशकर और अमित कुमार की है।

दोस्तों, प्यार जब दिल की धड़कनों में बस जाता है तो हर रास्ता, हर मौसम और हर एहसास उसी का नाम लेने लगता है। मन किसी और दुनिया में खोया खोया सा रहता है और हर पल बस अपने प्रिय की यादों के इर्द गिर्द ही घूमता है। ऐसी ही मासूम दीवानगी और मोहब्बत की मिठास से सजा है।

कहते हैं प्यार कभी दस्तक देकर नहीं आता तो वो तो चुपके से दिल में उतर जाता है फिर मुस्कानें भी बेवजह खिलने लगती हैं और हर धड़कन किसी का नाम गुनगुनाने लगती है ऐसे ही शरारत मासूमियत और प्यार के रंगों से सजा है हमारा अगला गीत फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी आवाजें किश कुमार सानू और अलका याग्निक की हैं

3:33 और 8 सेकेंड हुए हैं दोस्तों। एफएम गोल्ड यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही, और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। कहते हैं जब दूरियां बढ़ जाती हैं तो शब्द भी महकने लगते हैं। एक खत और उसमें रखा एक फूल कभी कभी पूरे दिल का हाल कह देता है। प्यार की उसी मासूम खुशबू, इंतजार की मिठास और रिश्तों की गर्माहट को समेटे है फिल्म सरस्वती चंद्र का ये सदाबहार नगमा। आइए सुनते हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में।

कभी-कभी प्यार भरी एक छोटी सी नसीहत भी रिश्तों की मिठास को और गहरा कर देती है। साल 2066 की फिल्म ममता का ये सदाबहार गीत, इन बहारों में अकेले ना फिरो, छेड़छाड़ अपनापन और हल्की सी फिक्र को बेहद खूबसूरती से बयां करता है। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की मधुर आवाजें इस गीत को हमेशा के लिए यादगार बना देती हैं। तो आइए आप और हम सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

प्यार सिर्फ इजहार का नाम नहीं, इसमें रूठना भी है, मनाना भी है और नोकझोंक भी है और मुस्कुराहट कर हार मान लेने का अपना ही आनंद भी है। कभी एक छोटी सी तकरार रिश्ते में ऐसी मिठास खोल देती है कि वही पल उम्र भर की याद बन जाता है। अब जो सदाबहार गीत आपको सुनाने जा रही हूं, इसी चुलबुले अंदाज और प्यार भरी नोकझोंक का खूबसूरत सा उदाहरण है। इसमें रूठने की अदा है, मनाने की कोशिश है और दिलों के बीच छिपा वो अपनापन है जो हर शिकायत को मुस्कान में बदल देता है। कुछ इस तरह

तेरे नैनों की मैं दीप जलाऊंगा। इस खूबसूरत से गीत को आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। फिल्म का नाम है अनुराग।

दोस्तों कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं झूठा कहीं का फिल्म का यह गीत आवाज़ किशोर कुमार और आशा भोसले की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैभव तारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इसमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा आज ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खमेनी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस बारे में विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। यह राजनीतिक और आर्थिक संबंधों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। सीरिया में दमिश्क के एक कैफे में विस्फोट में लगभग 9 लोगों की मौत हो गई है। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह विस्फोट एक

सुबह के 4:10 और 52 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर, और इस समय आप सुनते हैं कार्यक्रम अरुणिमा। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। आप सभी को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी में हर किसी की मंजिल, पसंद और सपने अलग अलग होते हैं। दूसरों की राह देखकर अपनी दिशा मत बदलिए। जो आपके दिल को सुकून दे वही आपकी असली पहचान बन सकता है। बस होना चाहिए कि रिश्तों में सम्मान हो और जीवन में अपने मन की सच्ची आवाज सुनने का साहस। जब आप अपने मूल्यों और सपनों के साथ आगे बढ़ते हैं तभी सफर भी खूबसूरत बनता है और मंजिल भी। आइए सुनते हैं सफर फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज में।

जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि कोई खास वजह नहीं होती फिर भी मन नए-नए सपने बुनने लगता है यही छोटे-छोटे ख्याल यही अनदेखे एहसास आगे चलकर बड़े इरादों और नई मंजिलों की शुरुआत बन जाते हैं फिल्म रजनीगंधा का एक खूबसूरत गीत है जो हमें याद दिलाता है कि हर सपना पहले एक ख्याल बनकर ही जन्म लेता है इसलिए अपने मन की सकारात्मक सोच पर भरोसा रखिए क्योंकि आज की एक छोटी सी उम्मीद कल आपकी सबसे बड़ी सफलता बन सकती है तो आपको सुनवाते हैं रजनीगंधा फिल्म का गीत मुकेश के स्वर में

दोस्तों, जिंदगी में गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो अपनी भूलों से सीख लेकर खुद को बेहतर बनाता है। पछतावा अगर बदलाव की शुरुआत बन जाए तो हर ठोकर एक नई मंजिल का रास्ता दिखा सकती है। फिल्म जनता हवलदार का एक ऐसा ही गीत है। इसी आत्म मंथन और एहसास को ये गीत खूबसूरती से व्यक्त करता है। तो आइए सुनते हैं इस दिल को छूने वाला नगमा, जिसे स्वर दिया है अनवर ने। फिल्म का नाम है जनता हवलदार।

0: 4:30 होने को है। दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा मेरी यानी अर्चना बिसारिया के साथ। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं समर्पण से बनते हैं। जब किसी की खुशी हमारी अपनी खुशी बन जाए तो जीवन के हर रंग और भी खूबसूरत लगने लगते हैं। सच्चा अपनापन वही है जो बिना किसी अपेक्षा के मुस्कुराहट बांटता रहे। अब जो गीत हम आपको सुनवाएंगे उसमें प्रेम समर्पण और जीवन की खूबसूरत भावनाओं का अनमोल एहसास है। जी हाँ दोस्तों, इस समय हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आनंद का ये गीत, आवाज मुकेश की है।
1: नहीं नहीं

कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है कि कोई हमें पूरी तरह समझ नहीं पा रहा, लेकिन याद रखिए हर सफर का एक पड़ाव ऐसा भी होता है जहां सबसे पहले हमें खुद से दोस्ती करनी होती है। जब मन मजबूत हो जाए तो दुनिया की हर राह आसान लगने लगती है। ऐसा ही एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अभिमान फिल्म का, आवाज किशोर कुमार की। ये गीत हमें याद दिलाता है कि सच्ची ताकत अपने भीतर के विश्वास में छिपी होती है। जब आप खुद का साथ नहीं छोड़ते तो मंजिल देर से ही सही लेकिन मिलती जरूर है।

दोस्तों, ये बात तो हम जानते हैं कि जिंदगी में शोर बहुत है, लोगों की राय, उम्मीदें और सलाह, लेकिन इन सब के बीच एक आवाज ऐसी भी होती है जो कभी झूठ नहीं बोलती, आपके अपने दिल की आवाज। जब इरादे सच्चे हों तो उसी आवाज पर भरोसा करना सबसे बड़ा साहस होता है। अपनी पहचान, अपने सपनों और अपने विश्वास को कभी खोने ना दे। जो अपने दिल की सच्ची पुकार सुनता है वही जीवन

की राह पर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। और ये गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं उसे आवाज दी है हेमंत कुमार ने, फिल्म का नाम है

दोस्तों, जिंदगी की सबसे खूबसूरत धुन तब बनती है जब रिश्तों में तालमेल, विश्वास और अपनापन हो। जैसे सुर और गीत एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, वैसे ही साथ, सहयोग और संवेदनाएं जीवन को अर्थ देती हैं। आइए सुनते हैं ये गीत जिसमें इसी मधुर संगम का खूबसूरत एहसास है। प्रेम, समर्पण और संगीत की मिठास से सजाइए नगमा आज भी दिलों को छू लेता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गूंज उठी शहनाई फिल्म के इस गीत की, जिसे स्वर दिया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने।

जिंदगी हमें हर पल यही सिखाती है कि सच और आत्मविश्वास से बढ़कर कोई ताकत नहीं। हालात चाहे जैसे भी हो, अपने वजूद को छिपाकर नहीं बल्कि पूरे हौसले और ईमानदारी के साथ जीना ही असली जीत है। इसी जज्बे को आवाज देता है हमारा ये गीत, हमें प्रेरित करता है कि डर या संकोच नहीं बल्कि सच्चाई, साहस और आत्मविश्वास के साथ जीवन का हर पल जिए। जी हाँ, अब आपको सुनवा रहे हैं ये खूबसूरत सा गीत महेंद्र कपूर की आवाज में। फिल्म का नाम है हमराज।

समय बदलता है और इसी बदलाव का नाम है जिंदगी। कभी लोग साथ चलते हैं, कभी राहें अलग हो जाती हैं, कभी अपने भी दूर लगते हैं तो कभी अजनबी दिल के करीब आ जाते हैं। लेकिन इन बदलते रिश्तों के बीच अगर कुछ अटल रहता है तो वो है आपका आत्मविश्वास और आपका सच्चा व्यक्तित्व। जिंदगी हमें यही सिखाती है कि लोगों के बदलने से अपने सपनों का रास्ता मत बदलो। हर अनुभव आपको थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और समझदार बनाता है। तो दोस्तों, ये है कार्यक्रम के अंतिम गीत की ओर हम आपको ले चल रहे हैं। फिल्म का नाम है बदलते रिश्ते, आवाज किशोर कुमार की और सुमन कल्याणपुरी की है। आप आनंद लीजिए इस प्यारे से गीत का और मुझे यानी अर्चना बिसारिया को अनुमति दीजिए इस कार्यक्रम यानी अरुणिमा कार्यक्रम को समाप्त करने का। आपसे जल्द फिर मुलाकात होगी कार्यक्रम में। नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान की संबंध अति विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच से श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के साथ एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों को की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श होगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा आज ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस बारे में विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। सीरिया के दशमिक के एक कैफे में विस्फोट में 9 लोगों की मौत की खबर है। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह विस्फोट एक कैफे के अंदर हुआ। यह कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। लॉस एंजल्स स्टेडियम में खेले गए मैच में मिकेल ओयारजाबल ने 36वें मिनट में गोल करके स्पेन को बढ़त दिलाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का मुकाबला पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच के मैच के विजेता से होगा। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की टेस्ट श्रृंखला का कार्यक्रम जारी कर दिया है। श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त को गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जबकि दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो के सिंगलीज स्पोर्ट्स क्लब में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham.

5:10 और 56 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए अब बारी है कार्यक्रम भोर सुहानी की। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ इस कार्यक्रम में अर्चना बिसारिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत गीत के साथ, जिसे आवाज दी है कविता कृष्णमूर्ति ने। फिल्म का नाम है 1942 A Love Story।